0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। यह घोषणा कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान की गई। यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक और प्रतिनिधि टीम कार्टिस ने इस अवसर पर भारत सरकार और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, 2500 से अधिक वर्षों से सारनाथ दुनिया भर के बौद्धों के लिए तीर्थ और प्रेरणा का स्थल रहा है। यहीं भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और करुणा, ज्ञान व शांति की उन शिक्षाओं को साझा किया जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि सारनाथ के मंदिर, स्तूप और मठ सदियों से चली आ रही आस्था, समर्पण और मानवता की साझा विरासत के साक्षी हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में तेजी से होती लड़ाई और होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर जारी टकराव से दुनिया भर में जहाजों की आवाजाही भी खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव लाल सागर में वाणिज्य जहाजों पर हुती हमले फिर शुरू होने और समुद्री आवाजाही पर बढ़ते खतरों से बेहद चिंतित हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने देशों, जहाज मालिकों और सभी संबंधित पक्षों से फंसे नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने नाविकों को दूतावास की सहायता, जरूरी सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें सुरक्षित निकालकर स्वदेश भेजने का आग्रह किया। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: मध्य पूर्व में युद्ध और समुद्री तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लाल सागर और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बढ़ते खतरे से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने वाणिज्यिक जहाजों पर हूती हमले फिर शुरू होने पर गहरी चिंता जताई है। हूती विद्रोहियों ने अहम समुद्री मार्ग बाब अल मंदब जल डमरू मध्य की नाकेबंदी की धमकी दी है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता शाबिया मंटू ने कहा, जल डमरू मध्य में जारी जानलेवा हमलों से नाविकों की जान को गंभीर खतरा है। हाल के सप्ताहों में 2 भारतीय नाविक मारे गए। युद्ध शुरू होने के बाद से नाविकों की मौत की दर्ज संख्या 17 हो गई है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता शाबिया मंटू के शब्द। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगभग 400 जहाजों पर कम से कम 6000 चालक दल सदस्य अब भी फंसे हैं। कुछ नाविकों को भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा सहायता के बिना बेसहारा छोड़ दिए जाने की भी खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने हमले रोकने और फंसे नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है।
2: यूरोप में जंगल की आग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप कार्यालय के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में पूरे यूरोप में जंगल की आग से जली हुई भूमि का क्षेत्रफल 57% बढ़ा है। 2025 में यूरोपीय क्षेत्र में जंगल की आग से 22 लाख हेक्टर भूमि नष्ट हो गई है। 2022 में यह क्षेत्रफल 14 लाख हेक्टर था। स्पेन और पुर्तगाल में जंगल की आग की घटनाएं पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: स्पेन और फ्रांस में शुक्रवार को जंगल की भीषण आग ने हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैड्रिड के आसपास 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर दी गई। दक्षिणी फ्रांस में भी लगभग 63,000 लोगों को निकाला गया है और करीब 80 घर नष्ट हो चुके हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आग की घटनाएं अधिक बार और अधिक भीषण हो रही हैं। आग का धुआं बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। WHO ने प्रभावित इलाकों में लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है।
2: बिजली चलित वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण खनिज बेहद जरूरी है। ये विकास और समृद्धि का रास्ता खोल सकते हैं, मगर कमजोर शासन व अवैध खनन के कारण यही संसाधन सशस्त्र गुटों, भ्रष्टाचार और हिंसक टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। गत सप्ताह सुरक्षा परिषद में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक में इन खतरों से निपटने के उपाय पर चर्चा हुई। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: बुधवार को सुरक्षा परिषद में एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्वों की बढ़ती मांग ने इन खनिजों को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन से होने वाली कमाई अक्सर शांति को पहुंच से दूर कर देती है। बैठक में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का उल्लेख हुआ, जहां विशाल खनिज संपदा होने के बावजूद बड़ी आबादी निर्धनता में जी रही है और अवैध खनन से सशस्त्र गुटों को धन मिलता रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने पारदर्शी शासन, जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं और खनिज संपदा के लाभों के न्यायसंगत बंटवारे पर जोर दिया।
2: पूर्वी अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ओचा के अनुसार 20 जुलाई को भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में तोरखम सीमा चौकी के पास स्थित वापसी पारगमन शिविर में 3 अफगान शरणार्थियों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: इस हफ्ते पूर्वी अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 23 मौतें नूरिस्तान प्रांत में हुई, जहां बाढ़ घरों, बाजारों और सड़कों तक को बहा ले गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत समन्वय कार्यालय के अनुसार भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से पारून में सबसे अधिक तबाही हुई है। कम से कम 22 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और 45 अन्य बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़कों, पुलों, जलापूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे प्रभावित समुदायों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ने कहा है कि फिलहाल पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और लापता या घायल लोगों तक पहुंचना है। यूनिसेफ और साझेदार प्रभावित इलाकों में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जहां परिवारों को आश्रय, भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और घरेलू सामान की तत्काल आवश्यकता है।
2: दक्षिण पूर्व एशिया में संगठित अपराध का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से बदल गया है। नई प्रौद्योगिकियों और साझा वित्तीय नेटवर्कों ने दक्षिण पूर्व एशिया में संगठित अपराध को पहले से कहीं अधिक व्यापक और जटिल बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यह बदलता आपराधिक ढांचा अब क्षेत्र की सीमाओं से आगे फैलकर शासन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: UNODC की नई रिपोर्ट के अनुसार पहले अलग अलग काम करने वाले स्थानीय आपराधिक गिरोह अब आपस में जुड़कर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक तंत्र चला रहे हैं। क्षेत्र में धन शोधन, ऑनलाइन धोखाधड़ी, अवैध जुआ, बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण और मादक पदार्थों, हथियारों व मानव तस्करी जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं। UNODC ने कहा है कि जनरेटिव AI, डीप फेक, क्रिप्टो करेंसी और सैटेलाइट इंटरनेट जैसी तकनीकों से अपराधियों के लिए कानून प्रवर्तन से बचना और भी आसान हो गया है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित लोकधर्मी विश्वासियों, परिवार और जीवन संबंधी परम धर्म पीठी परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल केविन फेरिल ने 2027 में मनाए जाने वाले आगामी विश्व युवा दिवस के विषय में एक वक्तव्य जारी किया। कार्डिनल महोदय ने कहा, सियोल में विश्व युवा दिवस 2027 के शुरू होने में अभी एक साल बाकी है, किंतु जो युवा अपने पुरोहितों के साथ कोरिया जा रहे हैं वे इस सम्मेलन की तैयारियों में उत्साह और उमंग के साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्व युवा दिवस के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए रचा गया लाक्षणिक गीत, आधिकारिक प्रार्थना और चुने गए 5 संरक्षक संतों के साक्ष्य ऐसे प्रेरितिक अस्त्र और साधन हैं जो युवा प्रतिनिधियों को 2027 के सम्मेलन के लिए स्वतः को आध्यात्मिक रूप से तैयार होने में सहायता प्रदान करेंगे। कार्डिनल ने रेखांकित किया कि अपने 40 वर्षीय इतिहास में विश्व युवा दिवस युवाओं और स्थानीय कलीसियाओं के विश्वास, उत्साह और सक्रिय भागीदारी के कारण लगातार समृद्ध हुआ है। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं धर्माध्यक्षों और संपूर्ण विश्व में युवाओं की प्रेरिताई हेतु जिम्मेदार लोगों को अपना आमंत्रण दोहराता हूं कि वे सियोल 2027 की ओर युवाओं के साथ चलें, उनकी तैयारी में उक्त संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करें और उन्हें इस तीर्थ यात्रा को विश्वास, कलीसिया के साथ सहभागिता और येसु से वैयक्तिक मुलाकात के यथार्थ अनुभव के तौर पर महसूस करने में मदद प्रदान करें। संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने बेघर लोगों की समस्या को दूर करने के महत्व पर जोर दिया है, ताकि ऐसे धारणीय और टिकाऊ शहर बनाए जा सकें जो मानव सम्मान और जन कल्याण को बढ़ावा दें। संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने 28 जुलाई 2026 को जारी एक संदेश में कहा कि सतत विकास की ओर बढ़ते शहरों के निर्माण हेतु बेघर लोगों की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करे और आम भलाई में योगदान प्रदान कर सके। बयान में कहा गया, बेघर लोगों का बने रहना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतरात्मा को परेशान करना चाहिए। संदेश में कहा गया, हर किसी को एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जिसे वह घर कह सके, जहां वह रिश्ता बना सके, परिवार को संभाल सके और समाज में पूरी तरह से हिस्सा ले सके। अस्तु घर को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु या वित्तीय परिसंपत्ति के तौर पर नहीं, बल्कि समाज की नींव के पत्थर के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो सबकी भलाई के लिए काम करे। परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन का संदेश न्यूयॉर्क में जारी नवीन शहरी कार्यसूची पर संयुक्त राष्ट्र संघीय आम सभा 2026 की उच्च स्तरीय बैठक में प्रकाशित किया गया था। यह डॉक्यूमेंट एक धारणीय भविष्य के लिए एक साझा दृष्टि को दर्शाता है, जो सुचारू रूप से सुनियोजित और अच्छी तरह से व्यवस्थित किए गए शहरीकरण पर केंद्रित है। परम धर्म पीठी मिशन के संदेश में कहा गया, जब शहरों को एकात्मता, सबको साथ लेकर चलने और जरूरतमंद लोगों की देखभाल की दृष्टि से निर्मित किया जाता है, तो वे सिर्फ रहने और काम करने की जगह से कहीं अधिक उपयोगी स्थल बन जाते हैं। वे मुलाकात, भाईचारे और आशा के स्थल बन जाते हैं। यह भी स्मरण दिलाया गया कि बेघर होने से बुनियादी मानवाधिकारों के उपयोग की क्षमता कमजोर होती है। फ्रांस, स्पेन और ग्रीस में भयानक जंगल की आग के विस्तार के बीच स्थानीय कलीसियाएं लोगों की व्यावहारिक मदद कर रही हैं और बेघर समुदायों को अपने घर और रोजी रोटी खोने के सदमे से उबरने में मदद कर रही हैं। दक्षिणी यूरोप में फैली जंगल की आग की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं, जंगल राख में बदल गए हैं और हजारों परिवारों को अपने घर और सामान खोने का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांसीसी कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के प्रतिनिधि फादर यान ले लाए कहते हैं कि घरों और प्रकृति को जलते हुए देखना इंसान की कमजोरी और पर्यावरण पर निर्भरता की साफ याद दिलाता है। संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लाउदातो सी का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, प्राकृतिक परिदृश्य के बिगड़ने से परित्याग और एकाकीपन का एहसास हो सकता है। पीड़ित न सिर्फ अपना सामान खो देते हैं, बल्कि सामान के साथ साथ अपनी यादें, काम करने के औजार और अपने आसपास के इलाके से जुड़े अपने निज इतिहास को भी खो देते हैं। स्पेन में गेताफे धर्म प्रांत के प्रवक्ता अल्वारो दे हुआना कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया है, जबकि अन्य लोग
उम्मीद को पकड़कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैड्रिड के दक्षिण पश्चिम से निकाले गए लोगों में से कई आप्रवासी परिवार हैं जिन्हें नहीं पता कि वे कब घर लौटेंगे या उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। दोनों देशों में कलीसियाई संस्थाएं भोजन, शरण स्थल और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रही हैं। भारत की सर्वोच्च अदालत ने अधिकारियों को उन छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया है जिन्होंने परीक्षा पत्रों के लीक हो जाने तथा अन्य गड़बड़ियों के चलते विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई के आदेश में राज्य सरकारों को 18 साल से कम उम्र के उन सभी छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का भी निर्देश दिया जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया था। भारतीय कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के प्रवक्ता फादर रॉबिन्सन रॉड्रिक्स ने कहा, हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्र प्रदर्शनकारियों को न्याय दिलाने के लिए हस्तक्षेप किया जो शांतिपूर्ण विरोध के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया सेक्युलर फोरम के कोऑर्डिनेटर आरिफ खान ने कहा कि कोर्ट का आदेश यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी छात्र प्रदर्शनकारी को सरकारी एजेंसियों से और परेशानी का सामना न करना पड़े जो प्रायः अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर काम करती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन की पहल पर शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शनों को देश भर के छात्रों से भारी समर्थन मिला जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। कॉकरोच जनता पार्टी ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया था लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें विरोध प्रदर्शनों को लेकर किसी को निशाना न बनाने का अपना वादा पूरा नहीं करती तो वे फिर से सड़कों पर उतर आएंगे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

benedict.

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। यह घोषणा कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान की गई। यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक और प्रतिनिधि टीम कार्टिस ने इस अवसर पर भारत सरकार और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, 2500 से अधिक वर्षों से सारनाथ दुनिया भर के बौद्धों के लिए तीर्थ और प्रेरणा का स्थल रहा है। यहीं भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और करुणा, ज्ञान व शांति की उन शिक्षाओं को साझा किया जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि सारनाथ के मंदिर, स्तूप और मठ सदियों से चली आ रही आस्था, समर्पण और मानवता की साझा विरासत के साक्षी हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में तेजी से होती लड़ाई और होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर जारी टकराव से दुनिया भर में जहाजों की आवाजाही भी खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव लाल सागर में वाणिज्य जहाजों पर हुती हमले फिर शुरू होने और समुद्री आवाजाही पर बढ़ते खतरों से बेहद चिंतित हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने देशों, जहाज मालिकों और सभी संबंधित पक्षों से फंसे नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने नाविकों को दूतावास की सहायता, जरूरी सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उन्हें सुरक्षित निकालकर स्वदेश भेजने का आग्रह किया। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: मध्य पूर्व में युद्ध और समुद्री तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लाल सागर और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बढ़ते खतरे से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने वाणिज्यिक जहाजों पर हूती हमले फिर शुरू होने पर गहरी चिंता जताई है। हूती विद्रोहियों ने अहम समुद्री मार्ग बाब अल मंदब जल डमरू मध्य की नाकेबंदी की धमकी दी है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता शाबिया मंटू ने कहा, जल डमरू मध्य में जारी जानलेवा हमलों से नाविकों की जान को गंभीर खतरा है। हाल के सप्ताहों में 2 भारतीय नाविक मारे गए। युद्ध शुरू होने के बाद से नाविकों की मौत की दर्ज संख्या 17 हो गई है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता शाबिया मंटू के शब्द। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगभग 400 जहाजों पर कम से कम 6000 चालक दल सदस्य अब भी फंसे हैं। कुछ नाविकों को भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा सहायता के बिना बेसहारा छोड़ दिए जाने की भी खबर है। संयुक्त राष्ट्र ने हमले रोकने और फंसे नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है।
2: यूरोप में जंगल की आग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप कार्यालय के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में पूरे यूरोप में जंगल की आग से जली हुई भूमि का क्षेत्रफल 57% बढ़ा है। 2025 में यूरोपीय क्षेत्र में जंगल की आग से 22 लाख हेक्टर भूमि नष्ट हो गई है। 2022 में यह क्षेत्रफल 14 लाख हेक्टर था। स्पेन और पुर्तगाल में जंगल की आग की घटनाएं पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से अधिक हो गई है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: स्पेन और फ्रांस में शुक्रवार को जंगल की भीषण आग ने हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैड्रिड के आसपास 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर दी गई। दक्षिणी फ्रांस में भी लगभग 63,000 लोगों को निकाला गया है और करीब 80 घर नष्ट हो चुके हैं। संगठन ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आग की घटनाएं अधिक बार और अधिक भीषण हो रही हैं। आग का धुआं बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। WHO ने प्रभावित इलाकों में लोगों से आधिकारिक निर्देशों का पालन करने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है।
2: बिजली चलित वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण खनिज बेहद जरूरी है। ये विकास और समृद्धि का रास्ता खोल सकते हैं, मगर कमजोर शासन व अवैध खनन के कारण यही संसाधन सशस्त्र गुटों, भ्रष्टाचार और हिंसक टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं। गत सप्ताह सुरक्षा परिषद में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक में इन खतरों से निपटने के उपाय पर चर्चा हुई। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: बुधवार को सुरक्षा परिषद में एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्वों की बढ़ती मांग ने इन खनिजों को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन से होने वाली कमाई अक्सर शांति को पहुंच से दूर कर देती है। बैठक में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का उल्लेख हुआ, जहां विशाल खनिज संपदा होने के बावजूद बड़ी आबादी निर्धनता में जी रही है और अवैध खनन से सशस्त्र गुटों को धन मिलता रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने पारदर्शी शासन, जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं और खनिज संपदा के लाभों के न्यायसंगत बंटवारे पर जोर दिया।
2: पूर्वी अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ओचा के अनुसार 20 जुलाई को भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में तोरखम सीमा चौकी के पास स्थित वापसी पारगमन शिविर में 3 अफगान शरणार्थियों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: इस हफ्ते पूर्वी अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 23 मौतें नूरिस्तान प्रांत में हुई, जहां बाढ़ घरों, बाजारों और सड़कों तक को बहा ले गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत समन्वय कार्यालय के अनुसार भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से पारून में सबसे अधिक तबाही हुई है। कम से कम 22 घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और 45 अन्य बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़कों, पुलों, जलापूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे प्रभावित समुदायों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। मानवीय राहत समन्वय कार्यालय ने कहा है कि फिलहाल पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और लापता या घायल लोगों तक पहुंचना है। यूनिसेफ और साझेदार प्रभावित इलाकों में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जहां परिवारों को आश्रय, भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और घरेलू सामान की तत्काल आवश्यकता है।
2: दक्षिण पूर्व एशिया में संगठित अपराध का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से बदल गया है। नई प्रौद्योगिकियों और साझा वित्तीय नेटवर्कों ने दक्षिण पूर्व एशिया में संगठित अपराध को पहले से कहीं अधिक व्यापक और जटिल बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यह बदलता आपराधिक ढांचा अब क्षेत्र की सीमाओं से आगे फैलकर शासन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: UNODC की नई रिपोर्ट के अनुसार पहले अलग अलग काम करने वाले स्थानीय आपराधिक गिरोह अब आपस में जुड़कर बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक तंत्र चला रहे हैं। क्षेत्र में धन शोधन, ऑनलाइन धोखाधड़ी, अवैध जुआ, बच्चों का ऑनलाइन यौन शोषण और मादक पदार्थों, हथियारों व मानव तस्करी जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं। UNODC ने कहा है कि जेनरेटिव AI, डीप फेक, क्रिप्टो करेंसी और सैटेलाइट इंटरनेट जैसी तकनीकों से अपराधियों के लिए कानून प्रवर्तन से बचना और भी आसान हो गया है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित लोकधर्मी विश्वासियों, परिवार और जीवन संबंधी परम धर्म पीठी परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल केविन फेरिल ने 2027 में मनाए जाने वाले आगामी विश्व युवा दिवस के विषय में एक वक्तव्य जारी किया। कार्डिनल महोदय ने कहा, सियोल में विश्व युवा दिवस 2027 के शुरू होने में अभी एक साल बाकी है, किंतु जो युवा अपने पुरोहितों के साथ कोरिया जा रहे हैं वे सम्मेलन की तैयारियों में उत्साह और उमंग के साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्व युवा दिवस के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए रचा गया लाक्षणिक गीत, आधिकारिक प्रार्थना और चुने गए 5 संरक्षक संतों के साक्ष्य ऐसे प्रेरितिक अस्त्र और साधन हैं जो युवा प्रतिनिधियों को 2027 के सम्मेलन के लिए स्वतः को आध्यात्मिक रूप से तैयार होने में सहायता प्रदान करेंगे। कार्डिनल ने रेखांकित किया कि अपने 40 वर्षीय इतिहास में विश्व युवा दिवस युवाओं और स्थानीय कलीसियाओं के विश्वास, उत्साह और सक्रिय भागीदारी के कारण लगातार समृद्ध हुआ है। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं धर्माध्यक्षों और संपूर्ण विश्व में युवाओं की प्रेरिताई हेतु जिम्मेदार लोगों को अपना आमंत्रण दोहराता हूं कि वे सियोल 2027 की ओर युवाओं के साथ चलें, उनकी तैयारी में उक्त संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करें और उन्हें इस तीर्थ यात्रा को विश्वास, कलीसिया के साथ सहभागिता और येसु से वैयक्तिक मुलाकात के यथार्थ अनुभव के तौर पर महसूस करने में मदद प्रदान करें। संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने बेघर लोगों की समस्या को दूर करने के महत्व पर जोर दिया है, ताकि ऐसे धारणीय और टिकाऊ शहर बनाए जा सकें जो मानव सम्मान और जन कल्याण को बढ़ावा दें। संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने 28 जुलाई 2026 को जारी एक संदेश में कहा कि सतत विकास की ओर बढ़ते शहरों के निर्माण हेतु बेघर लोगों की समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है, जो प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करे और आम भलाई में योगदान प्रदान कर सके। बयान में कहा गया, बेघर लोगों का बने रहना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतरात्मा को परेशान करना चाहिए। संदेश में कहा गया, हर किसी को एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जिसे वह घर कह सके, जहां वह रिश्ता बना सके, परिवार को संभाल सके और समाज में पूरी तरह से हिस्सा ले सके। अस्तु घर को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु या वित्तीय परिसंपत्ति के तौर पर नहीं, बल्कि समाज की नींव के पत्थर के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो सबकी भलाई के लिए काम करे। परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन का संदेश न्यूयॉर्क में जारी नवीन शहरी कार्यसूची पर संयुक्त राष्ट्र संघीय आम सभा 2026 की उच्च स्तरीय बैठक में प्रकाशित किया गया था। यह डॉक्यूमेंट एक धारणीय भविष्य के लिए एक साझा दृष्टि को दर्शाता है, जो सुचारू रूप से सुनियोजित और अच्छी तरह से व्यवस्थित किए गए शहरीकरण पर केंद्रित है। परम धर्म पीठी मिशन के संदेश में कहा गया, जब शहरों को एकात्मता, सबको साथ लेकर चलने और जरूरतमंद लोगों की देखभाल की दृष्टि से निर्मित किया जाता है, तो वे सिर्फ रहने और काम करने की जगह से कहीं अधिक उपयोगी स्थल बन जाते हैं। वे मुलाकात, भाईचारे और आशा के स्थल बन जाते हैं। यह भी स्मरण दिलाया गया कि बेघर होने से बुनियादी मानवाधिकारों के उपयोग की क्षमता कमजोर होती है। फ्रांस, स्पेन और ग्रीस में भयानक जंगल की आग के विस्तार के बीच स्थानीय कलीसियाएं लोगों की व्यावहारिक मदद कर रही हैं और बेघर समुदायों को अपने घर और रोजी रोटी खोने के सदमे से उबरने में मदद कर रही हैं। दक्षिणी यूरोप में फैली जंगल की आग की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं, जंगल राख में बदल गए हैं और हजारों परिवारों को अपने घर और सामान खोने का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांसीसी कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के प्रतिनिधि फादर यान लेलाय कहते हैं कि घरों और प्रकृति को जलते हुए देखना इंसान की कमजोरी और पर्यावरण पर निर्भरता की साफ याद दिलाता है। संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लाउदातो सी का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, प्राकृतिक परिदृश्य के बिगड़ने से परित्याग और एकाकीपन का एहसास हो सकता है। पीड़ित न सिर्फ अपना सामान खो देते हैं, बल्कि सामान के साथ साथ अपनी यादें, काम करने के औजार और अपने आसपास के इलाके से जुड़े अपने निज इतिहास को भी खो देते हैं। स्पेन में गेताफे धर्म प्रांत के प्रवक्ता अल्वारो दे हुआना कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया है, जबकि अन्य लोग
उम्मीद को पकड़कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैड्रिड के दक्षिण पश्चिम से निकाले गए लोगों में से कई आप्रवासी परिवार हैं जिन्हें नहीं पता कि वे कब घर लौटेंगे या उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। दोनों देशों में कलीसियाई संस्थाएं भोजन, शरण स्थल और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रही हैं। भारत की सर्वोच्च अदालत ने अधिकारियों को उन छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया है जिन्होंने परीक्षा पत्रों के लीक हो जाने तथा अन्य गड़बड़ियों के चलते विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई के आदेश में राज्य सरकारों को 18 साल से कम उम्र के उन सभी छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का भी निर्देश दिया जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया था। भारतीय कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के प्रवक्ता फादर रॉबिन्सन रॉड्रिक्स ने कहा, हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्र प्रदर्शनकारियों को न्याय दिलाने के लिए हस्तक्षेप किया जो शांतिपूर्ण विरोध के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया सेक्युलर फोरम के कोऑर्डिनेटर आरिफ खान ने कहा कि कोर्ट का आदेश यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी छात्र प्रदर्शनकारी को सरकारी एजेंसियों से और परेशानी का सामना न करना पड़े जो प्रायः अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर काम करती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन की पहल पर शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शनों को देश भर के छात्रों से भारी समर्थन मिला जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। कॉकरोच जनता पार्टी ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया था लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें विरोध प्रदर्शनों को लेकर किसी को निशाना न बनाने का अपना वादा पूरा नहीं करती तो वे फिर से सड़कों पर उतर आएंगे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट पर।

0: से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
3: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।

0: साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों।

0: में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, भोज मानव के रूप में हमें एक दूसरे के संग एक संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यह हमारे लिए आनंद, सहचर्य और एक दूसरे के जीवन में सहभागिता का एक प्रतीक है। किसी भी भोज में शामिल होते हुए हम अपने जीवन को एक दूसरे के संग साझा करते और अपनी समझ तथा प्रेम में बढ़ते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 18वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों की विषय वस्तु हमारे लिए ईश्वरीय भोज की चर्चा करती है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि किसी भोज हेतु निमंत्रण दिए जाने पर हम किन मनोभावों के संग उसमें सहभागी होते हैं। क्या भोज में शामिल होना हमें दूसरों के जीवन में सहभागी करता और इसके द्वारा हम उन्हें ईश्वरीय प्रेम का एहसास दिलाते हैं। क्या हमारी सहभागिता निमंत्रण देने वाले के लिए खुशी का कारण बनती है।
1: संध्या होने पर शिष्य यीशु के पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे।
0: श्रोताओं, ईश वचन का श्रवण हमारे जीवन की शारीरिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्यास बुझाए, जिससे हम अपने जीवन की तृप्ति को दूसरों के संग साझा कर सकें, जो उनके लिए जीवन का कारण बनेगा। श्रोताओं, नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर की ओर से उनके द्वारा तैयार किए गए भोज में सहभागी होने का एक निमंत्रण देता है। ईश्वर हमें अपने भोज में सहभागी होने हेतु खुला निमंत्रण देते हैं। वे हम सबों के लिए स्वादिष्ट भोज तैयार करने की बात कहते हैं, जहां सारी चीजें मुफ्त में हमारे लिए दी जाती हैं। जिनके पास कुछ भी रकम नहीं है, वे भी ईश्वर के इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं, जहां उनके लिए स्वादिष्ट भोजन और उत्तम अंगूरी उपलब्ध है। श्रोताओं, ईश्वर के ये मनोभाव हमारे लिए उनके हृदय की उदारता को व्यक्त करते हैं। वे सबों के लिए सदैव खुले रहते, हम चाहे जैसे भी क्यों ना हो, उनका द्वार हमारे लिए हर परिस्थिति में खुला रहता है। इतना ही नहीं, वे हमें सर्वोत्तम चीजें देने हेतु सदैव तैयार रहते हैं। यह हमारे लिए मानव के प्रति ईश्वर के शर्तहीन प्रेमपूर्ण संबंध को व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप वे सदैव हमारे संग संयुक्त रहने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। ईश्वर के द्वारा हमारे लिए तैयार किया गया भोज हमारे लिए ईश्वर की उत्कंठा को घोषित करता है। श्रोताओं, जिस भांति हमने शुरू में कहा कि भोज हमारे मानवीय जीवन में प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है, हम इसे अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। यह हमारे लिए दूसरों के संग अपनी खुशी को साझा करने का एक अवसर बनता है, जहां हम अपने प्रेमपूर्ण रिश्ते को और अधिक गहराई में ले जाते हैं। और यही कारण है हम अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों और सगे संबंधियों को अपने संग भोज की मेज पर आने का निमंत्रण देते हैं। भोज की मेज हमारे लिए वह स्थल बनती है, जहां हम न केवल शारीरिक रूप में अपने को तृप्त होता पाते हैं, बल्कि यह हमें मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप में एक दूसरे के संग अपने संबंध को और भी अधिक गहराई तक ले जाने में मदद करता है। यीशु ख्रिस्त का अपने शिष्यों के संग अंतिम व्यारी का भोज हमारे लिए संबंधों की घनिष्ठता का सर्वोत्तम उदाहरण है। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमारे लिए संबंधों की घनिष्ठता की चर्चा करता है, जिसके संबंध में संत पौलुस रोमियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं कि ईश्वर के संग हमारे संबंध की घनिष्ठता को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती है। कोई भी चीज हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं अपनी ओर से इस प्रेम की पहल की है। हमने नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमें सर्वप्रथम प्रेम किया है, और इसका प्रमाण हमारे लिए हमारा जीवन है, जो हमें मुफ्त में मिला है। और इस जीवन की सुरक्षा हेतु पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। श्रोताओं, क्योंकि जीवन हमें प्रेम में दिया गया है, यह हमें इसे एक दूसरे के संग बांटने का आह्वान करता है, जहां हम अपने को निस्वार्थ रूप में दूसरों के लिए देने हेतु बुलाए जाते हैं। प्रेम में हमारा स्वयं को देना, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमारी ओर से ईश्वर के प्रेम को दूसरों के संग बांटना है, जैसे कि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने हम सबों के संग किया है। क्योंकि हम ईश्वर के प्रेम को दूसरों के संग साझा करते हैं, यह सदैव विभिन्न रूपों में हमारे लिए बना रहता है, चाहे हम जीवन की विषम परिस्थितियों में ही क्यों ना हो। श्रोताओं, आज का सुसमाचार, जिसका श्रवण हमने किया, प्रेम के रहस्य और उसकी प्रकाष्ठा को मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के कार्य में हमें पूर्ण रूपेण समझने को मदद करता है। यीशु अपनी शिक्षा सुनने वालों और अपने पीछे आने वालों की सुधि लेते हैं। वे उन्हें न सिर्फ आध्यात्मिक भोजन से तृप्त करते, बल्कि उनके शारीरिक भोजन की भी चिंता करते हैं, जो हमें भौतिक जीवन में बने रहने और अपने कार्यों को सुचारू रूप में करने को मदद करता है। यीशु का जन समूह के लिए खाने की फिक्र करना उनके हृदय में व्याप्त प्रेम को व्यक्त करता है। हम लोगों के लिए यीशु ख्रिस्त पहल करते हैं, अतः वे कहते हैं, तुम ही उन्हें खाने के लिए कुछ दे दो। यीशु के इन वचनों में हम लोगों के प्रति उनकी चिंता, करुणा और प्रेम को पाते हैं, अतः वे अपने शिष्यों को उनके खाने की व्यवस्था करने को कहते हैं, जबकि शिष्यगण अपने स्वामी से इस बात हेतु आग्रह करते हैं कि वे लोगों को विदा करें, जिससे वे अपने खाने की चीजों की व्यवस्था कर सकें। श्रोताओं, किसी के लिए एक नेक सोच एक नेक हृदय में पनपता है, और किसी भी व्यक्ति में नेक और भले विचार उसके अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। यह हमारे लिए इस बात का साक्ष्य देता है कि वह व्यक्ति ईश्वर के प्रेम और करुणा से ओतप्रोत है। यीशु में हम इसी प्रेम को देखते हैं, जहां वे पिता के संग अपने को संयुक्त करते और उसी प्रेम को हमारे लिए बांटते हैं। आइए हम यीशु ख्रिस्त के भोज में शामिल होने हेतु उनसे मिलने वाले निमंत्रण को स्वीकार करें, जिससे हम अपने जीवन के विभिन्न भूखों से तृप्त होकर दूसरों की भूखों को मिटाने हेतु स्वयं से बाहर जा सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने पेरू के राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 में भाग ले रहे युवाओं को एक वीडियो संदेश भेजा है और अपने संदेश में युवाओं को जोर दिया है कि आज बहुत सारे लोगों को उस खुशी एवं फैलने वाली गवाही की जरूरत है जिसको मसीह से प्यार करने वाला युवा ही दे सकता है। बहुत सारे दुखी दिलों में उम्मीद जगाने के लिए ईश्वर के माध्यम बनने से नहीं डरें। इन्हीं शब्दों के साथ पोप लियो ने पेरू के राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 में हिस्सा लेने वाले युवाओं को संबोधित किया जो 30 जुलाई से 2 अगस्त तक प्यूरा इलाके के चुलुकाना शहर में हो रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य है युवा दिवस में भाग लेने वालों का यीशु ख्रिस्त के साथ व्यक्तिगत संबंध मजबूत करना और एक ऐसी कलीसिया को बढ़ावा देना जो सहभागिता, एकता और प्रेरितिक भावना में एकजुट हो। अपने वीडियो संदेश में पोप ने 4,000 से अधिक प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया जिसमें पेरू भर के युवा, धर्माध्यक्ष, पुरोहित और धर्म संघ शामिल हैं। पोप ने कहा, मैं इस पहल का प्रत्युत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कलीसिया के जीवन को नया एवं मजबूत बनाता है। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस की विषय वस्तु पर चिंतन करते हुए जिससे धर्माध्यक्ष सम्मेलन के युवा एवं लोक धर्म विभाग ने चुलुकानास धर्म प्रांत के साथ मिलकर आयोजित किया है, पोप ने युवाओं को यह साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया कि ख्रिस्त से संयुक्त रहना संभव है और कार्यक्रम के आदर्श वाक्य को याद दिलाया, हिम्मत रखो, ख्रिस्त जीवित है। पोप लियो ने कहा, हमारे बीच प्रभु की उपस्थिति पर दृढ़ विश्वास ही वह आंतरिक आग है जो हमें साहसी बनने हेतु प्रेरित करती है। उन्होंने युवाओं को अपने आराम से बाहर निकलकर विश्वास में भाई बहनों के समुदाय का हिस्सा बनने, दोस्ती के सच्चे रिश्ते बनाने और यह गवाही देने के लिए प्रोत्साहन दिया कि ख्रिस्त में एक साथ रहना संभव है। पोप लियो ने युवाओं को आमंत्रित किया कि वे इन दिनों प्रभु से मिलने वाले वरदानों को पाने के लिए अपना दिल खोलें। उन्होंने कहा, उन बहुत सारे दिलों में उम्मीद जगाने के लिए ईश्वर का माध्यम बनने से नहीं डरें जो दुख झेल रहे हैं। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे इस सभा के अनुभव को अपने तक सीमित ना रखें। इससे सिर्फ अपने फोन के फोटो या सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में ही ना रहने दें। इसके बजाय उन्होंने इसे अपने जीवन की गवाही के द्वारा साझा करने का प्रोत्साहन दिया और जोर दिया कि आज बहुत से लोगों को उस खुशी की और फैलने वाली गवाही की जरूरत है जिसको ख्रिस्त से प्यार करने वाला एक युवा ही दे सकता है।
1: संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार 31 जुलाई को वाटिकन सिटी स्टेट के नए मौलिक कानून पर हस्ताक्षर किया। जैसा कि इसके प्रस्तावना में बताया गया है कि यह प्रशासन की नई जरूरतों और हाल के सालों में लाए गए कई जरूरी विधायी बदलावों को ध्यान में रखने की जरूरत को पूरा करता है। यह कानून तुरंत लागू हो गया और पिछले मौलिक कानून की जगह ले रहा है जो 13 मई 2023 से लागू था। नए कानून में नवंबर 2025 के मोतु प्रोप्रियो द्वारा पहले ही पेश किए गए बदलाव को एक ही कानून टेक्स्ट में शामिल किया गया है जिसके तहत परम धर्म पीठीय समिति की अध्यक्षता अब सिर्फ कार्डिनलों के लिए आरक्षित नहीं है। संत पापा ने वाटिकन सिटी स्टेट के पिछले मौलिक कानून के अनुच्छेद 8 और परिच्छेद 1 को रद्द कर दिया है जिसमें यह नियम था कि सिर्फ कार्डिनल ही परम धर्म पीठीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम कर सकते हैं। यह पद अब सिस्टर रफायला पेट्रिनी के पास है जो सचिवालय की अध्यक्ष भी हैं। नए मौलिक कानून के अनुच्छेद 8 में अब यह कहा गया है कि परम धर्म पीठीय समिति में कार्डिनल और अध्यक्ष सहित दूसरे सदस्य होंगे जिन्हें संत पापा 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं। उधर विश्व युवा दिवस सियोल 2027 में 1 साल बाकी है। स्थानीय आयोजन समिति LOC कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तीर्थयात्रियों की सेवा, रहने की जगह, परिवहन, सुरक्षा, मेडिकल देखभाल और संचार सहित सभी विभाग में तैयारी की शुरुआती काम से लेकर पूरी तरह लागू करने तक ले जा रही है। विश्व युवा दिवस हर 2 साल में होता है और लाखों कैथोलिक युवाओं को इकट्ठा करता है और 2027 का सम्मेलन साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में 3 से 8 अगस्त तक होगा। एशिया में विश्व युवा दिवस पहली बार 1995 में मनीला में हुआ था। अगले सोमवार 3 अगस्त 2026 को होने वाले एक साल के काउंटडाउन में विश्व युवा दिवस सियोल 2027 यूट्यूब चैनल पर आधिकारिक रचा गया लाक्षणिक गीत रिलीज किया जाएगा। गाने का नाम है कॉन्फिडेंट ईगो विसी मुंडम, अर्थात हिम्मत रखो मैंने दुनिया जीत ली है। यह संत योहन के सुसमाचार का वह श्लोक भी है जिसे इस विश्व युवा दिवस की थीम के तौर पर चुना गया था। इसे कोरियन गीतकार फ्रांसिस जियोन किम ने लिखा है। 3 अगस्त को स्थानीय आयोजन समिति ब्रीथ ऑफ लाइफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन भी लॉन्च करेगा, जो युवाओं को अपने देशों में पेड़ लगाने और ऑनलाइन अपनी भागीदारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पहल संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र लौदातो सी से प्रेरित है और 2023 में पुर्तगाल के लिस्बन में हुए पिछले विश्व युवा दिवस के लिए भी ऐसा ही कैंपेन किया गया था। 1 अगस्त 2023 को विश्व युवा दिवस शुरू होने तक लगभग 18,000 पेड़ लगाए गए थे। उधर मास्को की मिसाइलों ने एक बार फिर राजधानी कीव पर हमला किया, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और 28 लोग घायल हैं, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। मास्को के हमलों से शहर के 5 जिले प्रभावित हुए हैं, कीव के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। युद्ध के मैदान में अपने मकसद पूरे करने में नाकाम रहने पर रूस आम लोगों के खिलाफ अपने हवाई हमले और आतंक बढ़ा रहा है। उन्होंने एक बार फिर देश में एयर डिफेंस को मजबूत करने की मांग की। कल रात का हमला पिछले 48 घंटों में रूस का दूसरा सबसे बड़ा हमला था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, भोज मानव के रूप में हमें एक दूसरे के संग एक संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यह हमारे लिए आनंद, सहचर्य और एक दूसरे के जीवन में सहभागिता का एक प्रतीक है। किसी भी भोज में शामिल होते हुए हम अपने जीवन को एक दूसरे के संग साझा करते और अपनी समझ तथा प्रेम में बढ़ते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 18वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों की विषय वस्तु हमारे लिए ईश्वरीय भोज की चर्चा करती है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि किसी भोज हेतु निमंत्रण दिए जाने पर हम किन मनोभावों के संग उसमें सहभागी होते हैं। क्या भोज में शामिल होना हमें दूसरों के जीवन में सहभागी करता और इसके द्वारा हम उन्हें ईश्वरीय प्रेम का एहसास दिलाते हैं। क्या हमारी सहभागिता निमंत्रण देने वाले के लिए खुशी का कारण बनती है।
1: संध्या होने पर शिष्य यीशु के पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे।
0: श्रोताओं, ईश वचन का श्रवण हमारे जीवन की शारीरिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्यास बुझाए, जिससे हम अपने जीवन की तृप्ति को दूसरों के संग साझा कर सकें, जो उनके लिए जीवन का कारण बनेगा। श्रोताओं, नबी इसायस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर की ओर से उनके द्वारा तैयार किए गए भोज में सहभागी होने का एक निमंत्रण देता है। ईश्वर हमें अपने भोज में सहभागी होने हेतु खुला निमंत्रण देते हैं। वे हम सबों के लिए स्वादिष्ट भोज तैयार करने की बात कहते हैं, जहां सारी चीजें मुफ्त में हमारे लिए दी जाती हैं। जिनके पास कुछ भी रकम नहीं है, वे भी ईश्वर के इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं, जहां उनके लिए स्वादिष्ट भोजन और उत्तम अंगूरी उपलब्ध है। श्रोताओं, ईश्वर के ये मनोभाव हमारे लिए उनके हृदय की उदारता को व्यक्त करते हैं। वे सबों के लिए सदैव खुले रहते, हम चाहे जैसे भी क्यों ना हो, उनका द्वार हमारे लिए हर परिस्थिति में खुला रहता है। इतना ही नहीं, वे हमें सर्वोत्तम चीजें देने हेतु सदैव तैयार रहते हैं। यह हमारे लिए मानव के प्रति ईश्वर के शर्तहीन प्रेमपूर्ण संबंध को व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप वे सदैव हमारे संग संयुक्त रहने की तीव्र अभिलाषा करते हैं। ईश्वर के द्वारा हमारे लिए तैयार किया गया भोज हमारे लिए ईश्वर की उत्कंठा को घोषित करता है। श्रोताओं, जिस भांति हमने शुरू में कहा कि भोज हमारे मानवीय जीवन में प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है, हम इसे अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। यह हमारे लिए दूसरों के संग अपनी खुशी को साझा करने का एक अवसर बनता है, जहां हम अपने प्रेमपूर्ण रिश्ते को और अधिक गहराई में ले जाते हैं। और यही कारण है हम अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों और सगे संबंधियों को अपने संग भोज की मेज पर आने का निमंत्रण देते हैं। भोज की मेज हमारे लिए वह स्थल बनती है जहां हम न केवल शारीरिक रूप में अपने को तृप्त होता पाते हैं, बल्कि यह हमें मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप में एक दूसरे के संग अपने संबंध को और भी अधिक गहराई तक ले जाने में मदद करता है। यीशु ख्रिस्त का अपने शिष्यों के संग अंतिम व्यारी का भोज हमारे लिए संबंधों की घनिष्ठता का सर्वोत्तम उदाहरण है। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमारे लिए संबंधों की घनिष्ठता की चर्चा करता है, जिसके संबंध में संत पौलुस रोमियों के नाम अपने पत्र में कहते हैं कि ईश्वर के संग हमारे संबंध की घनिष्ठता को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती है। कोई भी चीज हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं अपनी ओर से इस प्रेम की पहल की है। हमने नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमें सर्वप्रथम प्रेम किया है, और इसका प्रमाण हमारे लिए हमारा जीवन है, जो हमें मुफ्त में मिला है। और इस जीवन की सुरक्षा हेतु पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। श्रोताओं, क्योंकि जीवन हमें प्रेम में दिया गया है, यह हमें इसे एक दूसरे के संग बांटने का आह्वान करता है, जहां हम अपने को निस्वार्थ रूप में दूसरों के लिए देने हेतु बुलाए जाते हैं। प्रेम में हमारा स्वयं को देना, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमारी ओर से ईश्वर के प्रेम को दूसरों के संग बांटना है, जैसे कि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने हम सबों के संग किया है। क्योंकि हम ईश्वर के प्रेम को दूसरों के संग साझा करते हैं, यह सदैव विभिन्न रूपों में हमारे लिए बना रहता है, चाहे हम जीवन की विषम परिस्थितियों में ही क्यों ना हो। श्रोताओं, आज का सुसमाचार, जिसका श्रवण हमने किया, प्रेम के रहस्य और उसकी प्रकाष्ठा को मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के कार्य में हमें पूर्ण रूपेण समझने को मदद करता है। यीशु अपनी शिक्षा सुनने वालों और अपने पीछे आने वालों की सुधि लेते हैं। वे उन्हें न सिर्फ आध्यात्मिक भोजन से तृप्त करते, बल्कि उनके शारीरिक भोजन की भी चिंता करते हैं, जो हमें भौतिक जीवन में बने रहने और अपने कार्यों को सुचारू रूप में करने को मदद करता है। यीशु का जन समूह के लिए खाने की फिक्र करना उनके हृदय में व्याप्त प्रेम को व्यक्त करता है। हम लोगों के लिए यीशु ख्रिस्त पहल करते हैं, अतः वे कहते हैं, तुम ही उन्हें खाने के लिए कुछ दे दो। यीशु के इन वचनों में हम लोगों के प्रति उनकी चिंता, करुणा और प्रेम को पाते हैं। अतः वे अपने शिष्यों को उनके खाने की व्यवस्था करने को कहते हैं, जबकि शिष्यगण अपने स्वामी से इस बात हेतु आग्रह करते हैं कि वे लोगों को विदा करें, जिससे वे अपने खाने की चीजों की व्यवस्था कर सकें। श्रोताओं, किसी के लिए एक नेक सोच एक नेक हृदय में पनपता है, और किसी भी व्यक्ति में नेक और भले विचार उसके अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। यह हमारे लिए इस बात का साक्ष्य देता है कि वह व्यक्ति ईश्वर के प्रेम और करुणा से ओतप्रोत है। यीशु में हम इसी प्रेम को देखते हैं, जहां वे पिता के संग अपने को संयुक्त करते और उसी प्रेम को हमारे लिए बांटते हैं। आइए हम यीशु ख्रिस्त के भोज में शामिल होने हेतु उनसे मिलने वाले निमंत्रण को स्वीकार करें, जिससे हम अपने जीवन के विभिन्न भूखों से तृप्त होकर दूसरों की भूखों को मिटाने हेतु स्वयं से बाहर जा सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने पेरू के राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 में भाग ले रहे युवाओं को एक वीडियो संदेश भेजा है और अपने संदेश में युवाओं को जोर दिया है कि आज बहुत सारे लोगों को उस खुशी एवं फैलने वाली गवाही की जरूरत है जिसको मसीह से प्यार करने वाला युवा ही दे सकता है। बहुत सारे दुखी दिलों में उम्मीद जगाने के लिए ईश्वर के माध्यम बनने से नहीं डरें। इन्हीं शब्दों के साथ पोप लियो ने पेरू के राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 में हिस्सा लेने वाले युवाओं को संबोधित किया जो 30 जुलाई से 2 अगस्त तक पिउरा इलाके के चुलुकाना शहर में हो रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य है युवा दिवस में भाग लेने वालों का यीशु ख्रिस्त के साथ व्यक्तिगत संबंध मजबूत करना और एक ऐसी कलीसिया को बढ़ावा देना जो सहभागिता, एकता और प्रेरितिक भावना में एकजुट हो। अपने वीडियो संदेश में पोप ने 4000 से अधिक प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया जिसमें पेरू भर के युवा, धर्माध्यक्ष, पुरोहित और धर्म संघ शामिल हैं। पोप ने कहा, मैं इस पहल का प्रत्युत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कलीसिया के जीवन को नया एवं मजबूत बनाता है। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस की विषय वस्तु पर चिंतन करते हुए जिससे धर्माध्यक्ष सम्मेलन के युवा एवं लोक धर्म विभाग ने चुलुकाना धर्म प्रांत के साथ मिलकर आयोजित किया है, पोप ने युवाओं को यह साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया कि ख्रिस्त से संयुक्त रहना संभव है और कार्यक्रम के आदर्श वाक्य को याद दिलाया, हिम्मत रखो, ख्रिस्त जीवित है। पोप लियो ने कहा, हमारे बीच प्रभु की उपस्थिति पर दृढ़ विश्वास ही वह आंतरिक आग है जो हमें साहसी बनने हेतु प्रेरित करती है। उन्होंने युवाओं को अपने आराम से बाहर निकलकर विश्वास में भाई बहनों के समुदाय का हिस्सा बनने, दोस्ती के सच्चे रिश्ते बनाने और यह गवाही देने के लिए प्रोत्साहन दिया कि ख्रिस्त में एक साथ रहना संभव है। पोप लियो ने युवाओं को आमंत्रित किया कि वे इन दिनों प्रभु से मिलने वाले वरदानों को पाने के लिए अपना दिल खोलें। उन्होंने कहा, उन बहुत सारे दिलों में उम्मीद जगाने के लिए ईश्वर का माध्यम बनने से नहीं डरें जो दुख झेल रहे हैं। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे इस सभा के अनुभव को अपने तक सीमित ना रखें। इससे सिर्फ अपने फोन के फोटो या सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में ही ना रहने दें। इसके बजाय उन्होंने इसे अपने जीवन की गवाही के द्वारा साझा करने का प्रोत्साहन दिया और जोर दिया कि आज बहुत से लोगों को उस खुशी की और फैलने वाली गवाही की जरूरत है जिसको ख्रिस्त से प्यार करने वाला एक युवा ही दे सकता है।
1: संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार 31 जुलाई को वाटिकन सिटी स्टेट के नए मौलिक कानून पर हस्ताक्षर किया। जैसा कि इसके प्रस्तावना में बताया गया है कि यह प्रशासन की नई जरूरतों और हाल के सालों में लाए गए कई जरूरी विधायी बदलावों को ध्यान में रखने की जरूरत को पूरा करता है। यह कानून तुरंत लागू हो गया और पिछले मौलिक कानून की जगह ले रहा है जो 13 मई 2023 से लागू था। नए कानून में नवंबर 2025 के मोतू प्रोप्रियो द्वारा पहले ही पेश किए गए बदलाव को एक ही कानून टेक्स्ट में शामिल किया गया है जिसके तहत परम धर्म पीठीय समिति की अध्यक्षता अब सिर्फ कार्डिनलों के लिए आरक्षित नहीं है। संत पापा ने वाटिकन सिटी स्टेट के पिछले मौलिक कानून के अनुच्छेद 8 और परिच्छेद 1 को रद्द कर दिया है जिसमें यह नियम था कि सिर्फ कार्डिनल ही परम धर्म पीठीय समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम कर सकते हैं। यह पद अब सिस्टर रफायला पेट्रिनी के पास है जो सचिवालय की अध्यक्ष भी हैं। नए मौलिक कानून के अनुच्छेद 8 में अब यह कहा गया है कि परम धर्म पीठीय समिति में कार्डिनल और अध्यक्ष सहित दूसरे सदस्य होंगे जिन्हें संत पापा 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं। उधर विश्व युवा दिवस सियोल 2027 में 1 साल बाकी है। स्थानीय आयोजन समिति LOC कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तीर्थयात्रियों की सेवा, रहने की जगह, परिवहन, सुरक्षा, मेडिकल देखभाल और संचार सहित सभी विभाग में तैयारी की शुरुआती काम से लेकर पूरी तरह लागू करने तक ले जा रही है। विश्व युवा दिवस हर 2 साल में होता है और लाखों कैथोलिक युवाओं को इकट्ठा करता है और 2027 का सम्मेलन साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में 3 से 8 अगस्त तक होगा। एशिया में विश्व युवा दिवस पहली बार 1995 में मनीला में हुआ था। अगले सोमवार 3 अगस्त 2026 को होने वाले एक साल के काउंटडाउन में विश्व युवा दिवस सियोल 2027 यूट्यूब चैनल पर आधिकारिक रचा गया लाक्षणिक गीत रिलीज

इसके विश्व पत्र लाउदातो सी से प्रेरित है और 2023 में पुर्तगाल के लिस्बन में हुए पिछले विश्व युवा दिवस के लिए भी ऐसा ही कैंपेन किया गया था। 1 अगस्त 2023 को विश्व युवा दिवस शुरू होने तक लगभग 18,000 पेड़ लगाए गए थे। उधर मास्को की मिसाइलों ने एक बार फिर राजधानी कीव पर हमला किया, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए और 28 लोग घायल हैं, जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं। मास्को के हमलों से शहर के 5 जिले प्रभावित हुए हैं। कीव के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, युद्ध के मैदान में अपने मकसद पूरे करने में नाकाम रहने पर रूस आम लोगों के खिलाफ अपने हवाई हमले और आतंक बढ़ा रहा है। उन्होंने एक बार फिर देश में एयर डिफेंस को मजबूत करने की मांग की। कल रात का हमला पिछले 48 घंटों में रूस का दूसरा सबसे बड़ा हमला था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।